0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: हमारा जो रंग है ना, ये पक्का वाला रंग है और हम ऐसे रंगरेज हैं जिन्होंने आपको रंग दिया। कब का रंग दिया भाई? 100 साल होने जा रहे हैं तब से हमने आपको रंगना शुरू किया, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे। और ये रंग जो अब चढ़ा है जाके, ये तो उतरने वाला है नहीं। तो हमसे बेहतर रंगरेज तो कोई और हो ही नहीं सकता। सुन रहे हैं आप नॉनस्टॉप गपशप और ये रंगरेज है आकाशवाणी कोलकाता। और फिलहाल मैं एफएम रेनबो कोलकाता से जुड़ी हूँ चैनिका। और रंगों की जहाँ तक बात है, हमारे जीवन में जहाँ देखिए हर तरफ बस रंग ही रंग है। आपकी नज़रों का कसूर है अगर आपको ये रंग नहीं दिखाई देते। मुझे तो दिखते हैं हर जगह, हर तरफ केवल रंग और रंग। इसलिए जिंदगी बेरंगी ना हो जाए, रंग ढूंढिए आसपास। और हमारे पास तो 7 रंग हैं, सतरंगी हैं हम। और ये जो सतरंगी 7 है हमारा, यूं ही परवान चढ़े आगे बढ़े, यही तो चाहते हैं हम। तो नॉनस्टॉप गपशप में आज की ये जो सुबह है, ये कैसे बीतेगी? ज्यादा गाने और कम बातें ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आपके साथ मुझे कहनी कहनी, साझा करना ही करना। जैसे कि आज के खास दिन के बारे में, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और हर वर्ष 29 अगस्त को भारत की प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाने वाला ये एक वार्षिक उत्सव है हमारा, एक एनुअल सेलिब्रेशन है हमारे देश में। हॉकी के मजिशियन थे, जादूगर थे ध्यानचंद। और आपको अगर मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे शायद कि उन्होंने अपने खेल के करियर में 1000 से भी ज़्यादा गोल दागे हैं। और 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए हैं हमारे देश को। राष्ट्रीय खेल दिवस लोगों को शारीरिक फिटनेस, खेल और एकदम जो समग्र स्वास्थ्य है हमारा, उसके महत्व के बारे में जागरूक करता है। हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्य जो हैं, वो शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार और अलग अलग तरीके की खेल गतिविधियों का आयोजन करते हैं आज के दिन। और इसी दिन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया कैंपेन का शुभारंभ किया था। जानते हैं ना आप इसके बारे में? इस कैंपेन का उद्देश्य था फिटनेस को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग बनाना। और इस आंदोलन का मिशन व्यवहार में बदलाव लाना, यानी हम जिस तरह से सोचते हैं, जो काम करते हैं उसमें चेंज लाना, अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, एक्टिव रहना और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। और उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि नया भारत एक स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल बदलें, फिटनेस को आप दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो प्रधानमंत्री ने भारत से आग्रह किया, देश से आग्रह किया कि फिटनेस हमारी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज नए भारत को एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो फिट इंडिया आंदोलन का जो लक्ष्य है, वो फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज, पंचायत और घर घर तक पहुंचाकर एक जन आंदोलन का रूप देना है। तो आइए ना हम भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इसमें भागीदारी लें और ये तय कर लें कि अब से हम अपनी ओर ज्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को फिट बनाने की, फिट रखने की कोशिश जरूर करेंगे।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से ये गाना हमने सुना और सच में भी जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप पढ़ने लिखने से ही केवल नवाब नहीं बनेंगे, खेलने कूदने से भी बनेंगे नवाब, और एकदम शीर्ष वाले टॉप वाले वो खिलाड़ी जिस पर देश तो क्या पूरी दुनिया नाज करेगी। इसलिए खेलिए, खेलते कूदते जीवन को आगे बढ़ाइए तो हर चीज जो है वो एकदम बैलेंस्ड रहेगी, है ना। और खेलने की तो कोई उम्र होती नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं हम। तो इसलिए आज के इस खास दिन, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, चलिए हम सब मिलकर अपना जो ध्यान है वो सच में सीरियसली, हाँ अब सीरियसली अपनी तरफ लगाएं। और दूसरी जो एक ध्यान लगाने वाली चीज है वो है मौसम। अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी आपने सुन ही लिया न्यूज में खबर जो थी वो बता रही थी कि कैसे बारिश झमाझम होने वाली है। निम्नचाप यानी फिर से लो प्रेशर एरिया बन रहा है बे ऑफ बंगाल पर और बंगाल की खाड़ी का ये जो लो प्रेशर, ये इसको हाई क्यों नहीं होता है, प्रेशर हमेशा लो क्यों रहता है, फिर उसके लो प्रेशर की वजह से हम लोगों पर प्रेशर पड़ जाता है तो बारिश आएगी फिर से और इस वीकेंड एकदम आपको सराबोर करके जाएगी। लेकिन मेरे पास अभी कुछ अपडेट्स हैं वो बीते कल के बारे में भी कुछ बताऊंगी और आज की जो हालत रहने वाली है वेदर की उसके बारे में भी चलिए जान लें। कल का जो तापमान था वो अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। आपेक्षिक आर्द्रता सर्वोच्च रही 94% और न्यूनतम रही 69%। और आज क्या रहेगा, माजरा क्या रहेगा हाल, आसमान जो है वो मूलतः बादलों से ढका रहेगा और कुछ एक मतलब ऐसे ही जो स्पेल्स हैं बारिश की वो आपको जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको भिगो कर जाएंगी। हल्की से मध्यम बारिश आज दिन भर रुक रुक कर रह कर हो सकती है और साथ में आंधी आने के भी आसार हैं और अधिकतम तापमान आज रहने वाला है 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और आपको मैं बता दूं एक बेहद ज़रूरी बात, वो ये कि हमारे जो मछुआरे भाई हैं, मछुआरे भाइयों के लिए एक चेतावनी है, वो ये है कि 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलेंगी जो तटवर्ती इलाका है पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश, साथ में नॉर्थ बे ऑफ बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चलेंगी जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज़ हो सकती हैं। और ये जो माहौल है, ये जो परिवेश है, मौसम जो है ये बना रहने वाला है 31 तारीख तक, यानी 31 अगस्त तक, आज से लेकर 31 अगस्त तक आप लोग सावधान रहें और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल की अंदर गहराई में, गहरे समुद्र में आप बिल्कुल न जाएं। आपके लिए ये चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। हमारे जितने भी मछुआरे भाई हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले, साथ ही नॉर्थ बे ऑफ बंगाल का जो इलाका है वहां भी ये चेतावनी जारी की गई है, तो आप लोग समुद्र की तरफ बिल्कुल भी रवाना ना हो क्योंकि मौसम बहुत खराब रहने के आसार हैं। सुन रहे हैं आप नॉनस्टॉप गपशप और यहां बीच बीच में गपशप होगी क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं जो कहनी सुननी आपसे ज़रूरी हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए अब एक गीत सुनते हैं और आप बिल्कुल ना सोचिए कि हम आपके दोस्त नहीं, क्योंकि हम आपके

दोस्त तो हैं ही हैं, इसलिए तो बातचीत करते रहते हैं बीच बीच में, गानों के बीच बीच में। सुनते रहें जैनिका को नॉन स्टॉप गपशप में, ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता।

एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वान्ह 11 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम

नेपाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्योरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wbr@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि 22/9/2026 को समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हूं। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332210250 या फिर 0332210612 या 0332210500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों या ईमेल पर डाक अदालत या पेंशन अदालत ये शब्द लिखा होना चाहिए और ध्यान रहे, डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। आज के दिन
1: चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन इतिहास के आईने में अगर हम झांक कर देखें तो कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। सन 1612 में भारत के औपनिवेशिक युग की एक अहम घटना हुई। सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथ पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा। 1842 में आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही पहला अफीम युद्ध समाप्त हुआ। 1887 में कभी गांधी जी के डॉक्टर रहे और गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता का आज ही के दिन जन्म हुआ। सन 1932 में नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी समिति का गठन हुआ। 1949 में भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म हुआ। उनके नेतृत्व में ही भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपने मंगल यान को पहुंचाया था। 1969 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर मनोज तलवार का जन्म हुआ था आज ही के दिन। और 1976 में आज के दिन विद्रोही कवि, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का निधन हुआ था। आपकी पुण्यतिथि पर हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।
0: आज के दिन

नॉनस्टॉप गपशप में जेनी का हाजिर है आज ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। और फिलहाल घड़ी में समय, स्टूडियो की घड़ी में समय 10:43 और 12 सेकंड्स। भाई हम सेकंड्स के हिसाब से चलते हैं, समय के एकदम पाबंद। हमसे मतलब क्या ही इससे कम या इससे ज्यादा उम्मीद की जाए, रेडियो वाले जो हैं हम, है ना, इसलिए तो आपको सही समय बताते हैं। अच्छा, हमने जाना कार्यक्रम की एकदम शुरुआत में, आज का जो खास दिन है यह है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और क्यों है? क्योंकि आज है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, उनकी जयंती है आज, और इस मौके पर हम मनाते हैं एक खास दिन। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ही के दिन पैदा हुए और बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया, बहुत बड़ा एक मकाम बनाया अपने लिए, जिनमें एक का जिक्र मैं अभी कर चुकी, के राधाकृष्णन, भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक। और उनके अलावा आज ही के दिन जन्मी 1950 में लीना चंदावरकर, और 1958 में किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन। आज है आपकी जयंती, कोई और नहीं हुआ आपके जैसा। आज भी जो ये जो यंग जनरेशन है, जिसे हम जेन जी कहते हैं, या फिर उसके बाद वाले जेन अल्फा जो हैं, वो सारे के सारे आपके फैंस हैं, मुरीद हैं आपके। आपकी जो जनरेशन थी, पीढ़ी थी, उससे लेकर, उस दौर से लेकर अब तक के दौर के जितने भी लोग हैं, वो कोई भी नकार नहीं सकता आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को। इतना व्यापक आपका असर रहा है हम सब के ऊपर, और यही शायद वजह है कि आपको किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। तो आपको याद कर रहे हैं हम भावभीनी श्रद्धांजलि माइकल जैक्सन को। और आज बर्थडे है नागार्जुना का, दक्षिण भारत की फिल्मों के जाने माने नाम है, हिंदी में भी बहुत सारी फिल्में आपने की हैं। 1959 में आज ही के दिन आपका जन्म हुआ था। और इसके अलावा प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा भी आज ही के दिन जन्मी 1980 में। सभी को जन्मदिन की बधाई, और जो आज हमारे बीच नहीं है उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और अभी फिलहाल नागार्जुन की बात हुई तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, शानू का गाया हुआ क्रिमिनल फिल्म का गाना। सुने क्या ये गीत, चलिए ना, थोड़ा सा फ्लेवर बदलेगा। और जब नागार्जुन की बात उठी तो

0: What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
2: एक चुटकी नुस्खे,
3: एक चुटकी नुस्खे में आज मैं आपको बताऊंगी कि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से खाना, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो किस तरह से इसको फ्रेश रखें, स्टोरेज कैसे की जाए एकदम सही तरीके से। अब जितने फूड प्रोडक्ट्स हैं किचन में, आपका जितना सामान है, सबके बारे में तो बता नहीं सकती, तो मसालों के बारे में बताती हूँ आज। मसालों को गीले चम्मच से ना निकालें, ये तो कॉमन सेंस है बाबा। और डिब्बे का जो ढक्कन है उसे तुरंत बंद करें, एकदम एयर टाइट डिब्बा होना चाहिए। और बारिश के दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल

0: ना होने वाले जो मसाले हैं उनको फ्रिज में रखना सबसे बेहतर विकल्प है। फ्रिज में रख दीजिए जो आप रोजाना इस्तेमाल नहीं करते, तो इससे क्या है कि वो जो सेफ एकदम जगह पर सेफ स्टोरेज में चले जाएंगे और फंगस नहीं लगेगी उसमें। और बताना चाहूंगी डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो दूध को हमेशा उबालकर और दही को सही तापमान पर फ्रिज में रखें, क्योंकि इस मौसम में ये बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। और फल और सब्जियों की अगर बात करें तो कैसे उनको सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं ना उनको धोने के बाद पूरी तरह सुखा कर ही कॉटन के कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर फ्रिज में रखें, तो वो बहुत फ्रेश रहेगी, ऐसी फ्रेश रहेगी जैसे आपने उसी दिन खरीदी हो। जब भी आप निकालें फ्रिज से लगेगा कि अरे ये तो आज ही हम लेकर आए।
1: एक चुटकी नुस्खे

0: What, Chumka?
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM रेनबो पर।
0: कोलकाता कल्चर,
2: लोकल इवेंट्स की अगर बात करें तो महानायक उत्तम कुमार की बर्थ सेंटेनरी का उत्सव बड़े पैमाने पर शहर भर में आयोजित किया जाएगा। 5 और 6 सितंबर को महाजाति सदन में कॉन्सर्ट्स होंगे और इसके अलावा सदन एवेन्यू नजरुल मंच में भी 5 सितंबर बर्मनिया सीजन 4 कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। बिशप लेफ्रॉय रोड स्थित एक एक्टिविटी और कम्युनिटी सेंटर पर हैंड पॉटरी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है आज से, और ये जो वर्कशॉप है ये चलेगी 19 सितंबर तक।
0: कोलकाता कल्चर,
2: बस अब और क्या, बहुत हो गया। आज की ये सारी जो गपशप है ये अब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो होता है ना, बड़ा सा फुग्गा गुब्बारा, हवा जब उसकी निकल जाए तो छोटा हो जाता है, फुस हो जाता है, तो आज भी इस गुब्बारे में से सारी हवा, सारी गपशप निकल गई है, ये धीरे धीरे फुस फुस फुस फुस फुस होकर छोटा होते जा रहा है और ज़्यादा समय है नहीं तो हम इसको बस समेटेंगे, इसको बैग में भर लेंगे इस फुग्गे को, और दोबारा जब मिलने आऊंगी मैं तो इसको फिर से फुलाया जाएगा, इसमें गप्पे भरी जाएंगी, गाने भरे जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको आपके पास रिलीज किया जाएगा आपके कानों के माध्यम से। चैनिका कहती है टाटा बाय बाय, और चलते चलते एक मस्ती वाला गाना आप सबके लिए, साचित टंडन और आकाश सिंह की आवाज में मेट्रो इन दिनों से, सुनते रहे साथ रहे नॉन स्टॉप गपशप लेकर मैं आई थी आज, फिर किसी और दिन जरूर आऊंगी।

0: 3:02 और 32 सेकंड। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता 107 FM रेनबो दिल से दिल तक में। मैं हूं आपके संग आपकी आरजी भारती लेकर कार्यक्रम 3 का तड़का। लेकिन कार्यक्रम में उससे पहले परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति में आज हम जिस परियोजना सरकारी परियोजना की बात करेंगे वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए स्वरोजगार योजना। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है जिसके बारे में हम सभी अवगत हैं। इसमें से स्वरोजगार योजनाओं का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वे छोटे उद्योग, दुकान, हस्तशिल्प, सेवा कार्य, परिवहन तथा अन्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। स्वरोजगार योजनाएं बेरोजगारी कम करने और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं रोजगार का अवसर भी पैदा कर सकता है। साथ ही छोटे व्यवसायों के विकास से स्थानीय स्तर पर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए स्वरोजगार योजनाएं आत्मनिर्भरता, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। दोस्तों, आज कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति में हमने बात की भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक योजना जिसका नाम अल्पसंख्यकों के लिए स्वरोजगार योजना है।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: सूचना प्रस्तुति।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: शनिवार 3 बजे 3 का तड़का में मैं हूं आपके संग आपकी आज भारती, और कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ लेटेस्ट बॉलीवुड गपशप और साथ ही लेटेस्ट फिल्मों के रिलीज़ के आपको देते हैं अपडेट कि कैसा रहा कौन सा फिल्म। और अगर लेटेस्ट फिल्म की बात करें तो भाई टॉक्सिक की बात करेंगे ज़रूर, लेकिन टॉक्सिक में अभिनय करने वाली तारा सुतरिया की हम लोग बात करेंगे इस वक्त कार्यक्रम में। सबसे पहले उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो अपनी आर्थिक स्थिति और निवेश पर जब चर्चा कर रही थी तब उन्होंने बताया कि उन्हें डिसकैलकुलिया है, यानी कि गणित सीखने में कठिनाई है और कैलकुलेशन में भी वो बहुत वीक समझती हैं खुद को। दोस्तों ऐसा तो हम लोग कई बार ओपनली कहते हैं भाई मेरी मैथ्स वीक है तुम ही करो, लेकिन एक स्टार का इसको एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वक्त वो क्या करती है, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे अपने कैलकुलेशंस के वीक होते हुए भी बरकरार रखा है, तो उन्होंने कहा कि उनके पिता अक्सर उन्हें पैसे के प्रबंधन में इन सारी चीज़ों में मदद करते हैं। और आपको बता दें कि यश की फिल्म टॉक्सिक फेरी टेल फॉर द ग्रोनअप्स में नज़र आ रही है ये अभिनेत्री, और उन्होंने अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर चर्चा करते हुए बताया कि वो रियल इस्टेट में निवेश करना पसंद करती हैं, लेकिन इस बारे में कैलकुलेशन में वीक होने के कारण उनके पिता अक्सर उन्हें पैसों से जुड़ी कैलकुलेशंस में मदद करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे भाग्यशाली है क्योंकि पिताजी उनके वित्तीय मामलों में पूरी मदद करते हैं, बैंक के कामकाज, कागजी कार्रवाई और एक महिला के रूप में अपने वित्त का सही ढंग से ध्यान रखना उनका मानना है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि उनकी गणित थोड़ी सी वीक है और उन्हें डिसकैलकुलिया है तो इस सिलसिले में उन्हें अपने पिता की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि वो उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखती है। दोस्तों अगर ये बात कोई मुझसे पूछता तो शायद से मैं बोलती कि हाँ कुछ ऐसी असुविधाएं कभी कभार मुझे भी होती है, क्योंकि कई वक्त वो होता है ना कि हम लोग दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ एक ऐसा आंकड़ा आता है जहाँ पे बोलते हैं कि आप 5 रुपये दो मैं आपको ये पैसे वापस करता हूँ, तब मुझको लगता है कि अरे ये कैलकुलेशन कहीं ठीक बैठ रहा है क्या, आपकी भी हालत मेरे साथ होती है। तो मैं फ़ोन देखने के बहाने क्या करती हूँ ना, कैलकुलेटर निकालती हूँ और अपने आप को बड़ी स्मार्टली पेश करती हूँ कि देखो हाँ हाँ हाँ हाँ सही है एकदम ठीक है मैं दे दे रही हूँ। मतलब ये मैंने खुलासा अपनी तरह से किया, आप भी कुछ ऐसा खुलासा कर सकते हैं हमारे साथ और सोच सकते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है और ये होना स्वाभाविक है। भाई सभी मैथ्स की कैलकुलेशन धड़ल्ले से करें ये पॉसिबल नहीं है, और अगर कर भी सकते हैं तो कभी कभार हम लोग का माइंड जो है वो बहुत एकदम एक जैसा सोचता है और एक जगह पर आकर काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, तब हम लोग का कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है। लेकिन ये बड़ी तर्ज की बात करें बहुत ज़्यादा अगर हम लोग को कैलकुलेशन से जुड़े कामकाज करने हो तो वाकई में किसी एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। फिलहाल एक एक्सपर्ट हैं हमारे संग, कौन है एक्सपर्ट जी, अलग ट्रैक है और क्या हो सकता है, यहाँ पर एक्सपर्ट सिर्फ गीत ही है क्योंकि एक के बारे एक बेहतरीन तराने आपको सुनाते हैं हम सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। मैं हूँ आपके संग आपकी आरजे भारती।

समथिंग वेरी स्पेशल ज़रूर था जब आमिर खान सैफ अली खान दिल चाहता के रियूनियन में मिले, और अक्षय खन्ना कहाँ हैं ये सवाल जब पूछा गया तो बस वहाँ पर शांति थी। लेकिन वहाँ पर सिर्फ अक्षय खन्ना ही नहीं, प्रीति जिंटा भी नहीं दिखी। वेल, उनके अपने रीजंस रह सकते हैं नहीं आ पाने का, लेकिन बता दें आपको कि हाल ही में ये इस फिल्म से जुड़े कई अभिनेता और अभिनेत्री जुड़े इस फिल्म की 25 ईयर्स साल पूरा होने के एक रीयूनियन में उन्होंने फिर से एक दूसरे के साथ इस फिल्म के कई बातें शेयर की। और हालांकि इस फिल्म को 10 अगस्त में रिलीज़ के पूरे 25 साल हो गए हैं, और इससे जुड़ी इस फिल्म से जुड़ी कई सारी हमारी भी यादें हैं। वही वो जो कहते हैं ना कि एक ट्रेंड बदलता है फिल्म का, वो थी ये ट्रेंड ब्रेकिंग फिल्म दिल चाहता है, जिस फिल्म का इस वक्त आपको हम ट्रैक सुनाएंगे, कोई कहे कहता रहे। एकदम से डिस्को वाला ट्रैक है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी आरजे भारती के संग।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: कार्यक्रम तीन का तड़का, मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती और रहूंगी शाम के 4 बजे तक। दोस्तों, तीन का तड़का एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको सुनाते हैं लेटेस्ट बॉलीवुड गपशप और साथ ही बताते हैं आपको कि लेटेस्ट रिलीज होने वाली फिल्मों के क्या रहे बॉक्स ऑफिस में हाल, और साथ ही लेटेस्ट रिलीज के बारे में आपको बताते हैं, आने वाली फिल्मों के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, जहां हम टॉक्सिक की बात कर रहे थे, इस समय बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज के 4th दिन भी चर्चा में है। जी हाँ, करीब कई करोड़ इन्होंने कमाए हैं और अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रदर्शन और बेहतरीन कर रही है अपना बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन, वो है आवारापन 2। इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी एकदम से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है, और अगस्त 2026 में अभी तक टॉक्सिक और आवारापन 2 सबसे मजबूत परफॉर्मेंस की लिस्ट में है। तो दोस्तों, आवारापन 2 से साज भट्ट और सुबोध शर्मा की आवाज़ में ये गीत

दोस्तों कार्यक्रम में इस वक्त एक जरूरी सूचना। 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत के विषय पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 12 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाक घरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल ID cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050, 0332212061, 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विविध मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना यहीं समाप्त हुई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: सुन रहे हैं आप कार्यक्रम तीन का तड़का, अपनी आज ये भारती के संग। और बता दें आपको कि अगर आज आप बड़े पर्दे पर सिनेमा देखने गए हैं तो बताइएगा तो ज़रूर हमें कि ये जो 29 अगस्त से किंग 100 का पहला ग्लिम्स दिखाया जाएगा, ये वाकई में क्या दिखाया जा रहा है भाई। किंग

की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किंग 100। जी हाँ, ऐसी ही एक फिल्म आने वाली है नागार्जुना स्टारर, जहाँ पे वो कई दिनों बाद दिखेंगे एक्ट्रेस तबू के साथ, और वो उनके जन्मदिन पर ही जारी किया जाएगा, यानी आज के दिन जारी किया जाएगा बड़े पर्दे पर इस फिल्म की जो एकदम से कहते हैं ना, जो झलकी जो दिखाई जाएगी वो आज ही के दिन से होगा। और ये शाहरुख की किंग और किंग 100 नागार्जुना की, भाई किंग और किंग 100 का सवाल है, तो कौन 100 में से 100 लाएगा वो बात की बात है, लेकिन हम तो दर्शक है, हम श्रोता है और सुनते हैं बेहतरीन तराने, और दर्शक है देखते हैं अच्छी फिल्में, जो अच्छी रहेगी उसे हम बेहद पसंद करेंगे। फिलहाल झूमेंगे पठान के साथ, जहां अरिजीत सिंह और सुकृति कक्कड़ और विशाल की आवाज़ में आपको सुनाएंगे हम ये गीत कार्यक्रम 3 का तड़का में।

2008 में रिलीज हुई थी पहली ये रेस, यानी दौड़ दौड़ कर आई थी रेस फिल्म, और बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा कर गई थी। अब्बास मस्तान की डायरेक्टेड ये फिल्म आई थी, और उसके बाद रेस 2 कब आई थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी सैफ अली खान थे और साथ में थी दीपिका पादुकोण, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद रेस 3 आई, कब गई पता नहीं चला, पता नहीं रेस 4 आई है कि नहीं, मुझको जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आई होप कि मेरी ही तरह कईयों के यही विचार है, क्योंकि जिसने वो कहते ना कि रेस जो पहला वाला जो केक था इतना डिलीशियस था कि बाद वाला ट्रायल करने का और ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सेम बात कही जा सकती है भूल भुलैया फिल्म के लिए। पहली जो भूल भुलैया थी प्रियदर्शन वाली, एकदम से हटके कुछ ऐसी फिल्में रहती है फ्रेंड्स जो अपने पहले वर्जन में एकदम परिपूर्ण होकर आती है, कि बाद के जो इसके जितने भी 2, 3, 4 वर्जन निकले, हालांकि वो भी अच्छी रिलीज होती है, अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पर

धमाका कभी कभी काम भी कर जाती है, लेकिन हमारे दिल में वो पहली वाली बात ही बस जाती है। दोस्तों, इस वक्त ये गीत जो आप सुनेंगे, इसका भी सेकंड वर्जन आया था, लेकिन वो जो सैफ अली खान दूसरे में भी थिरके थे, इसमें भी थिरके, लेकिन ये वाला थिरकना ज़्यादा हमें याद रहेगा। कौन से गीत की बात कर रही हूँ? अभिजीत कहाँ है सैफ अली खान के साथ? बहुत जगह पर है, लेकिन ओले ओले में कुछ ज़्यादा ही खुलकर सामने आए हैं। सुनते हैं ये ट्रैक इस वक्त 107 FM रेनबो पर।

सो इसी के साथ अपने दोस्त भारती को दीजिए इजाज़त। FM रेनबो पर आप थे कार्यक्रम 3 का तड़का में, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेंगे अपनी दोस्त भारती के संग, और ठीक 5:15 पर FM गोल्ड पर चाय एंड क्लासिक्स में जुड़ेंगे फिर से आपके संग। दोस्तों सुनते रहिए, साथ रहिए, जाते जाते अरिजीत सिंह की आवाज़ में तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक। आपको मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगी ठीक 5:15 पर FM गोल्ड पर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। जाने अनजाने
1: दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7:03:28 हुआ है स्टूडियो क्लॉक में टाइम, और आप है इस वक्त 107 FM रेनबो दिल से दिल तक में कार्यक्रम छायालोक सैटरडे स्पेशल जाने अनजाने में। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। मैं आपको जानती हूँ तो आप जानते हैं मुझे, और मैं अनजान नहीं हूँ तो जाने अनजाने में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती हूँ आपके संग, 8 बजे तक रहूँगी आपके लिए, लेकर आपके फेवरेट तराने। और आज हम कुछ मोमेंट्स की बात करेंगे। कैसे मोमेंट्स भाई? हर मोमेंट अपने में खास होता है, लेकिन हर अदाकारा को शायद से ये सौभाग्य नहीं मिलता। कैसा सौभाग्य? एक ऐसा सौभाग्य जहाँ पर वो अपनी ही हिट गीत को किसी दूसरे फिल्म में अपने ही पर एक और बार नाचे और थिरके भी। जी हाँ, कैसे? कुछ ऐसे जैसे कि आपके सामने इस गीत के बाद ही हुआ था फिल्म में हेलेन के साथ। दोस्तों, आप इस गीत को सुनिए और इसके बाद बताएंगे आपको कार्यक्रम जाने अनजाने में आज हम बात किस विषय पे कर रहे हैं और कैसे मोमेंट्स की हम आज बात करेंगे। फिलहाल मोहब्बतें फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।
2: थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

2000 में रिलीज हुई थी, साल 2000 में रिलीज हुई थी ये फिल्म मोहब्बतें, और ठीक इसी गीत के बाद ही परंपरा प्रतिष्ठा के जो वाहक थे उनका एंट्री हुआ था, और साथ में मिस मोनिका जो नाच रही थी उन्होंने अपने फेमस गीत ओ हसीना जुल्फों वाली पर डांस किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस फिल्म में मिस मोनिका का किरदार निभाने वाली यस्टरडे फेमस एक्ट्रेस हेलेन की, जिन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस किया था एज मिस मोनिका, और इस गीत के बाद ही उन्होंने एक अपने ही नॉस्टैल्जिक और आइकॉनिक सॉन्ग ओ हसीना जुल्फों वाली पर डांस किया था, और इसी खास मोमेंट की हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम जाने अनजाने में। जी हाँ, कुछ ऐसे गीत जो अपने दौर में तो हिट रहे ही।

और बाद में उसी हिट गीत के हिट एक्टर ने या फिर उसी एक्टर ने अपने आने वाले ये बाद में कई सालों बाद अपने ही किसी फिल्म में उस गीत पर डांस किया, थोड़ी ही देर के एक स्पेशल अपीयरेंस हो या फिर फुल ट्रैक हो, आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं गीतों की। दोस्तों, आने वाले गीत में भी हम देखेंगे और सुनेंगे और याद भी करेंगे कि ये कब हुआ था। जी हाँ, मिशन मंगल फिल्म आई थी जहाँ पे विद्या बालन के पति का किरदार निभाया था एक्टर संजय कपूर ने, और उन्हीं की फिल्म थी राजा। वहाँ पर उन्होंने एक फेमस ट्रैक पर माधुरी के साथ डांस किया था जो था अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, और यही गीत पर उन्होंने फिल्म मिशन मंगल में विद्या बालन के साथ एक पब में भी डांस किया, और ये बना था एक ब्रेक थ्रू मोमेंट इन द फिल्म। मतलब वो कहते हैं ना कि उन्हीं पर उसी गीत पर फिर से एक और बार मोमेंट क्रिएट करके थे रखना। आज हम कार्यक्रम में ऐसी ही गीतों को पेश करेंगे और बात करेंगे उस खास मोमेंट की। दोस्तों, इस वक्त कार्यक्रम में आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराओ, और याद कीजिए मिशन मंगल का वो सीन जहां पर विद्या बालन के साथ संजय कपूर इस गीत में थिरकते हुए आपको नजर आते थे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे।

जाने अनजाने। दोस्तों आप सुन रहे हैं सैटरडे स्पेशल शायलो कार्यक्रम जाने अनजाने, अभी रोज भारती के संग, और हम बात कर रहे हैं फिल्मों के कुछ ऐसे मोमेंट्स की, कुछ ऐसे पलों की जहां एक स्टार जो अपने ही दौर में, अपने ही फिल्म में, एक ऐसे गीत में वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा और उसने उस गीत को फेमस किया और हम आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें उस गीत के द्वारा, और बाद में आगे चलकर उसी गीत को किसी और फिल्म में उसने उस पर थिरका और उस थिरकने पर भी एक मोमेंट एक अलग क्रिएट हुआ। हमने बात की अभिनेत्री हेलेन की, जिन्होंने मोहब्बत

ते फिल्म में अपनी फेमस सॉन्ग ओ हसीना जुल्फों वाली पर एक मोमेंट क्रिएट किया था। और फिर हमने बात की संजय कपूर की, जिन्होंने मिशन मंगल फिल्म में अपनी राजा फिल्म के टाइटल हिट ट्रैक अखियां मिलाओ पर एक मोमेंट क्रिएट किया था। और अभी हम बात करेंगे अरशद वारसी की। जी हाँ, सिम्बा फिल्म के उस गीत को तो आप याद कर ही रहे होंगे, आंख मारे। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने सारे एक्टर्स के बगैर भी अरशद वारसी को ही हाईलाइट किया जा सकता है इस गीत में, क्योंकि ये गीत है अरशद वारसी का ही, और उन्होंने ही सबसे पहले तेरे मेरे सपने फिल्म में ये गीत, इस गीत पर थिरके थे वो और इतना हिट किया था। एक्ट्रेस सिमरन थी उनके साथ आंख मारे इस ट्रैक में, और फिर से उन्होंने इसी गीत पर अपने मोमेंट्स दिखाए थे फिल्म सिम्बा में। और उस वक्त जैसे ही अरशद वारसी थिरकना शुरू किए थे, तब एक अलग ही पल क्रिएट हुआ था। फिलहाल हम तेरे मेरे सपने से एक गीत सुनेंगे, आंख मारे। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जाने अनजाने, जहां पे हम आने वाले मोमेंट्स में भी कुछ मोमेंट क्रिएट करने वाला ही बात आपसे शेयर करेंगे फिल्मों के।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक। कार्यक्रम छायालोक में आज है जाने अनजाने, और दोस्तों हम जानते हैं कि इस एक्टर को हमने कितने ही हिट फिल्मों में और कितने ही हिट गीत में थिरकते हुए तो कभी गाते हुए देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर ऋषि कपूर की। और ऐसे कितने ही बाद में फिल्म में मोमेंट्स आए दूसरी फिल्मों में जहाँ पर उन्होंने अपने ही हिट गीत को फिर से पेश किया। मुझे याद है हम तुम का एक सीन जहां पर वो गाते हैं मैं शायर तो नहीं, तो कहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो डफली वाले पर आलिया भट्ट के साथ थिरकते हैं, और शायर से ऐसे ही कितने अलग मोमेंट्स भी रहे होंगे। फिलहाल बॉबी फिल्म से हम सुनेंगे इसी एक्टर का ये गीत मैं शायर तो नहीं। आज कार्यक्रम जाने अनजाने में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कुछ मोमेंट्स की।

दोस्तों, इस गीत में रेवती और सलमान खान, जी हाँ, वो केमिस्ट्री खैर उस गीत में तो दिखी ही. और जब जब ये मिले, बार बार ये गीत जब बैकग्राउंड में बजता है, तो वही मोमेंट्स फिर से आ जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ था फिल्म टू स्टेट्स में, जब रेवती ने ये गीत पेश किया था. फिल्म में एक मोमेंट था जहाँ पे उनको पार्टी में ये गीत गाना था, और उन्होंने जैसे ये गाया तो बस लग रहा था कि वो लव फिल्म का वो मोमेंट फिर से वापस आ गया. मतलब ये उनके लिए ही ये गाना था और वो उनके लिए ही बना था. और जब जब रेवती आई, तब ये गीत भी उतना ही तरोताज़ा हुआ. दोस्तों, एक और गीत है जो इस वक्त रानी मुखर्जी जब पहली एकदम फ्रेश आई थी फिल्म मेहंदी के बाद गुलाम फिल्म में आमिर खान के साथ, आती क्या खंडाला में, उसके बाद आमिर खान तो नहीं लेकिन शाहरुख खान और

अमिताभ बच्चन पर और साथ ही रानी मुखर्जी पर यही गीत एकदम से पेश किया गया था। एनी गैसेस? जी हाँ, कभी कभी कभी कभी खुशी कभी गम का वो सीन जहाँ पर शावा शावा डांस करने के बाद एक क्या बोलती तू ये वाला मोमेंट हुआ था। तो दोस्तों, आज हम कार्यक्रम जाने अनजाने में कुछ ऐसे ही मोमेंट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी हिट ट्रैक को फिर से उसी अभिनेता के ऊपर फिर से किसी और फिल्म में पेश किया गया कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए ही। और इस वक्त ये गीत हम सुनेंगे आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म गुलाम से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जाने अनजाने।

सिर्फ खंडाला गर्ल ही नहीं भाई, डिस्को डांसर बाबू यानी मिथुन चक्रवर्ती भी एक और बार थिरके थे गोलमाल 3 में, जहां पे फिल्म को दिखाया गया था गोलमाल

3 में कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी येस्टर ईयर जो गर्लफ्रेंड रही थी उस दौर को दिखाया गया था जब वो पॉपुलर थे और ऑब्वियसली अभी भी पॉपुलर है, लेकिन फिल्म के अनुसार उस दौर में जब बैक में दिखाया गया तो दिखाया गया कि आई एम अ डिस्को डांसर पर मिथुन चक्रवर्ती थिरक रहे हैं, आसपास सब कुछ वैसे ही हो रहा है और किस तरह से गर्ल्स क्रेजी हो जा रही हैं, और इस गीत पर वो फिर से थिरके थे गोलमाल 3 में। तो भाई मिथुन दा कैसे दूर रह सकते हैं इस वक्त ओरिजिनल डिस्को डांसर आप सभी के लिए विजयन कोरस की आवाज़ में, डिस्को डांसर फिल्म का ये ट्रैक।

दोस्तों, आई एम अ डिस्को डांसर और इस वक्त आपसे मुझे लेनी होगी इजाजत कार्यक्रम चायलोक से। मैं जा रही हूँ, लेकिन ठीक 8:02 पर आपके लिए कार्यक्रम में रहेंगी प्रीति और आपके साथ रहेंगे बेहतरीन तराने भी। जाते जाते आप सभी के लिए इश्क फिल्म का ये गीत, जहाँ पर अजय देवगन तो थे, साथ में थे और भी कई एक्टर्स, लेकिन इसी गीत को फिर से गोलमाल अगेन में फिल्माया गया था अजय देवगन पर और परिणीति चोपड़ा पर। सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो के।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लो, 107 FM।

0: रेनबो पर।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो, छाया लो।
2: FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ जिंदगी

शायरी भी है, कुछ मज़ेदार बातें हैं और हाँ संगीत तो है ही, क्योंकि संगीत के बिना जिंदगी की कहानी थोड़ी अधूरी सी लगती है ना। तो पूरे एक घंटे तक रहूंगी आपके साथ। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से ले लीजिए थोड़ा सा विराम और हाथ में रख लीजिए एक चाय का प्याला और साथ में मोबाइल फोन, जिसे कि आप हमें डायल कर सके। हमारा नंबर है 2213-1341। इस नंबर पर डायल करके आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं, यानी आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी फरमाइश और हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आवाज़ तो दीजिए, बस आवाज़ देने भर की देरी है।

0: चलिए देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, बताइए कौन बोल रहे हैं।
1: आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बताइए।
1: गौरीपुर पालपाड़ा हावड़ा से संजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी बोलिए संजीत जी, बताइए।
1: दीदी मैं सुनना चाहता हूँ प्यार किया तो डरने का फिल्म से ओल्डी चुनरिया।
0: ओके,
1: और एक गीत सुनाना चाहता हूँ पोदु सावंत विश्वनाथ गायन लालू नगर में। और आपको
0: थैंक यू। तो चलिए, इन्होंने तो अपनी फरमाइश रख दी। अगर आप भी हम तक जुड़ना चाहते हैं और हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 2213-1341। तो वैसे भी ये गीत तो सुनाना ही था, क्योंकि जब दिल पर प्यार की चुनरिया चढ़ जाती है तो फिर मौसम भी सुहाना लगने लगता है और हर धुन, जी हाँ बिल्कुल, हर धुन प्रेम कहानी सुनाने लगती है ना।

कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए हुए पल कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। वक्त चेहरा बदल देता है, फासले बढ़ा देता है, मुलाकातें भी कम कर देता है, मगर यादें वे तो वहीं ठहर जाती हैं ना जहाँ हमने उन्हें आखिरी बार महसूस किया था। शायद इसीलिए कुछ नाम वक्त की किताब से भले ही धुंधले पड़ जाएं, दिल की किताब से कभी नहीं मिटते। ऐसी ही कुछ पुरानी खूबसूरत यादों के नाम फिल्म किनारा का ये जो गीत मैं सुनाने वाली हूँ, ये फरमाइश लेकर आए हैं मजरूल ने, और उन्होंने सुनना चाहे किनारा फिल्म से नाम गुम जाएगा। तो आइए उनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: वक्त तो चला है 8:23:17, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है इस वक्त। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी, मैं छावरापुरी से अशोक दत्त बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए जी अशोक जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: हमें वो गाना सुना दीजिए, मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म का पास आने लगी जा रहा।
0: ओके चलिए, तो आपकी फरमाइश पर हम ये गीत सुनाते हैं। वैसे भी कभी कभी किसी के करीब आने का एहसास बहुत धीरे धीरे होता है। पहले सिर्फ मुलाकातें बढ़ती हैं, फिर बातें लंबी होने लगती हैं और पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी दिल के बेहद करीब आ गया। नज़रों के झिझक हो, फिर बातों की मिठास और दिल की वो अनकही धड़कन, शायद प्यार की शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी एहसासों से होती है। तो इसी खूबसूरत एहसास को संगीत में महसूस कीजिए और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनारी का ये गीत सुनिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

0: चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: गुड इवनिंग, मैं प्रशांत प्रयाणी बोल रहा हूँ।
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: बाली भोपाल से पाया से।
0: बताइए।
1: मुझे लगन फिल्म से
0: हाँ
1: एक गाना को सुनना चाहता हूँ। ओरी छोड़ी।
0: ओके चलिए,
1: गीत को सुनना चाहता है और कुछ दोस्त के नाम डेडिकेट करना चाहते हूँ, जैसे लाबुनी नायक है और अंजलि श्रीराम है और दीनबंधु नायक, अरविंद नायक।
0: ओके।
1: इस बार जितने भी दोस्त एवं रेनबो सुंदर सभी के नाम बोल रहा हूँ।
0: ओके थैंक यू। तो इन्होंने अपनी पसंद के गीत तो सुनना चाहा है, साथ में औरों को भी सुनाना चाहा है, तो चलिए इस इनकी पसंद पर सुनाते हैं ये गीत जिसमें शहर की चकाचौंध तो नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू ज़रूर है।

0: चलिए देख लेते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हम त्रिपुरा से अशोकपुर बोल रहा है।
0: हाँ जी बताइए, कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: नागिन फिल्म से तेरे संगे प्यार है।
0: ओके, तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

वक्त हो चला है 8:53 और मेरी जाने का भी वक्त हो चला है। तो जाते जाते प्रीति आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए छोड़े जा रही है। फिर मुलाकात होगी, खुश रहिए, अच्छे से रहिए।

0: आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट। नमस्कार, आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास शख्सियत को लेकर आए हैं। कहते हैं ना कि हर चेहरे के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और हर किरदार के पीछे कई सारे अनुभव होते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, राइटर हैं, इंजीनियर हैं और आज हमारे गेस्ट भी हैं। इन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बहुत खूबसूरती से अपनी रियल लाइफ में यूज किया और अपनी कला को और गहरा और निखारा। जी, आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर निलय मिताश। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच हरप्रीत जी फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
0: प्लेजर इज आवर्स। और मैं जरूर पूछूंगी कि किस तरीके से आपने अपनी रियल जिंदगी के अनुभवों को अपनी एक्टिंग में यूज किया, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैमरा पर हम सब ने देखा है कि निलय मिताश कौन है, क्या करते हैं, सबको आपने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन ऑफ कैमरा निलय कौन है?
1: हरप्रीत जी, आपने तो पहला ही क्वेश्चन एक तरह से लाइफ का जवाब मांग लिया। बिकॉज ये जवाब तो मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कई सालों से कि निलय है कौन। निलय मिताश तो मुझे नाम दिया गया है। अगर मेरा नाम मेरे माता पिता ने कुछ और दे दिया होता तो क्या मैं कोई और होता? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ दिया है,
0: तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: सो निलय कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, आपकी जर्नी कैसे रही और क्या बचपन से इंटरेस्ट था एक्टिंग में?
1: जी, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आता हूँ। और देखिए, आप छोटे शहर में ना आप ये नहीं सोचते हो कि आप एक्टर बनोगे। एक्टर वर्ड तो यूज भी नहीं होता, हीरो बनोगे।
0: हीरो बनोगे,
1: ये आपके सोच के मच बियॉन्ड है।
0: जी।
1: कभी ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या हीरो बनूंगा, पर हाँ, फिल्मों से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। मैं हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था।
0: ओके।
1: और बाथरूम में जाके एक्टिंग प्रैक्टिस करता था।
0: लवली।
1: क्योंकि मैं बाहर नहीं कर सकता था। वहाँ
0: बाहर करते तो डांट पड़ती।
1: हाँ, डांट पड़ती।
0: अच्छा।
1: कर क्या रहे हो भाई, ये पढ़ाई करो, जाओ। बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक माई माइंड वॉज ट्रेन्ड कि बचपन से पढ़ाई करो। इंजीनियर तो बनना ही है, इंजीनियर तो आपका मतलब ऑप्शन, अगर आप आईएएस नहीं बनते तब इंजीनियर बनना।
0: ओके।
1: सो दैट इज व्हाट द मेंटालिटी वाज ओवर देयर। सो पर मुझे पिक्चरों से बहुत प्यार था और मैं बचपन से ही थोड़ा ड्रामेटिक इंसान रहा हूँ।
0: तो आप बचपन से एक्टिंग करते थे दरवाजा बंद करके?
1: हाँ, हाँ,
0: लेकिन
1: हाँ।
0: कभी स्कूल में एक्ट किया या कभी कुछ प्ले में पार्टिसिपेट किया?
1: नहीं, मैं स्कूल या प्ले में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैं एक्टिंग रियल लाइफ में करता था।
0: रियल लाइफ में? रियल लाइफ में। प्लीज हमें बताइए कैसे।
1: उधर अपने बिहार तरफ ना उसको एक्टिंग नहीं कहते थे, नौटंकी कहते थे।
0: ओके।
1: आपने सुना होगा ना, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते थे।
0: जी।

0: मैं बहाना नहीं बनाता था, मैं बिलीव करता था कि मुझे पेट दर्द हो रहा है।
1: मतलब आप पहले बिलीव करते थे और फिर एक्ट करते थे?
0: एक्ट करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग पूछते हैं एक्टिंग कैसे करते हो। एक अच्छे एक्टर को ना एक्ट नहीं करना होता है, दे जस्ट हैव टू लिव अ कैरेक्टर। सो विडंबना ये है कि एक अच्छे एक्टर को

0: था
1: कि अभी मेरे पेट में दर्द हो
0: मुझे
1: रहा
0: बिलीव
1: है,
0: होने लगता
1: आपको
0: था,
1: बिलीव होने लगता था।
0: सो उसको अपेरेंटली मुझे बाद में पता चला कि उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं।
1: वाओ, तो इस पर हम जरूर पूछेंगे आपसे कि क्या एक्टिंग सीखी जा सकती है। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ कि चलिए पेट दर्द का बहाना किया, स्कूल नहीं गए, और इसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा कारनामा किया कि पेरेंट्स को पक्का यकीन हो गया कि आप शायद एक्टर बन सकते हैं।
0: हाँ, देखो उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, बट हाँ उन्हें यह यकीन हो गया कि
1: एक्टिंग कर सकता हूँ।
0: ये लड़का का पढ़ाई में ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा है। एक बार मुझे, मैं ना बहुत ही नटखट था, बहुत ही नॉटी था, तो मुझे हॉस्टल में रख दिया गया था। एंड आई वॉज लाइक, मैं छोटा बच्चा था, आई वॉज लाइक मुझे जाना ही नहीं है, हॉस्टल नहीं जाना है।
1: ओके।
0: एंड माई डैड वॉज लाइक जाना तो पड़ेगा। उस समय मुजफ्फरपुर से रांची बस चलती थी। वो एक अलग ही जमाना था, बस चलती थी, उसमें वीडियो कोच लगा रहता था। एंड वी यूज टू वॉच, उसमें पायरेटेड मूवीज दिखाते थे। एंड मैं रास्ते पर अपने पापा को बोलते रहा कि पापा सोच लो एक बार, मुझे नहीं जाना है।
1: Okay.
0: It was like, मैं सोच लिया तो मैं तो जाना ही पड़ेगा, तुम बैठे हुए हो। We reached रांची बस स्टॉप पे, मैं एक बार आखिरी बार पूछा, पापा पक्का? उन्होंने बोला पक्का। मैं वहां जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे किडनैप करके ले जा रहा है।
1: Oh my God.
0: मतलब वहां भीड़ गैदर हो गई थी, पापा मेरे पापा को पीटने वाले थे लोग। ही somehow convinced them कि मैं उनका बेटा हूँ।
1: मुझे लगता है कि आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल था आपका बचपन में।
0: आई कन्विंस सो मेनी पीपल कि आई वाज बीइंग किडनैप्ड।
1: मासेस को आपने रियल टाइम में कन्विंस कर दिया।
0: मैं बच्चा था
1: जी।
0: सो तभी मुझे पता चला कि हाँ, नौटंकी तो अच्छा कर लेता हूँ।
1: नौटंकी कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे आपने बताया कि हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में कन्वेंशनल यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करें, स्टेबल जॉब करें, फिर कैसे एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, कैसे कन्विंस किया घर वालों को और खुद को? सबसे पहले
0: कुछ डिसीजन आप अपने लिए खुद लेते हो, कुछ डिसीजन बस आई डोंट नो डेस्टिनी ले लेती है। मैं कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा। मैं तो इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग के भी बाद एमबीए करने का प्लान था, बट समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ, आई लॉस्ट माय मदर। एंड देन यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि ठीक है, सक्सेसफुल हो के पैसे कमा के भी उसका क्या फायदा, पैसे तो जान नहीं बचा सकता ना। एंड ऑल्सो वेन यू लूज एवरीथिंग, यू नो, वेन यू लूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको हारने का डर खत्म हो जाता है। तो मेरा हारने का डर खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या था, अगर जीना है तो जो मन कर रहा है तो वो करता है। तो मुझे मन किया उस समय ये भी, तब भी मैं ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एक्सीडेंटली एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया बैंगलोर में, एंड दैट वाज एन इम्प्रोव थिएटर ग्रुप।
1: मतलब अपने आप को उस दुख से उबारने के लिए, हाँ, कह सकते
0: हैं सॉर्ट ऑफ। शुरुआत में इट वाज एन एस्केप, मैं बस कुछ करना था, देखता हूँ कुछ तो करूँ, एटलीस्ट एक्टिंग करने में मजा आता है, इसलिए ज्वाइन किया था।
1: एंड यू हैड अ स्टेबल जॉब साइड बाय साइड, आप काम भी कर रहे थे।
0: यस।
1: ओके। और मैं जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि बचपन से ही आपको फिल्मों से बहुत प्यार था, और आज हम बैठे भी आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, तो वो दिन भी ऐसे थे जब दूरदर्शन पर पुरानी फिल्म्स आती थी, तो कुछ ऐसा याद है कि स्क्रीन पर आपने किसी हीरो को देखा, बिकॉज हीरो यू नो वहां पर हीरो ही होते हैं, एक्टर्स नहीं, हीरो को देखा और सोचा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, या मेरा मन कर रहा है कि मैं भी करूं?
0: मुझे तो बचपन के विजुअल्स याद है, डीडी वन पे चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी शक्तिमान, मैं पागल था ये सब देखने में। उस समय छोटे शहर में लाइट कट जाती थी, तो अब आई वाज लाइक ढूंढो किस घर में जनरेटर है।
1: वाओ,
0: बिकॉज़
1: एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए,
0: बिकॉज़ उस समय ये नहीं था ना ओटीटी की, फिर कभी भी देख लो। आई वाज लाइक ये हो ही नहीं सकता है, कहीं से भी जनरेटर ढूंढ के लाओ। And I was so ziddy, I was like my dad, I would start crying. I would say कि अगर मैं miss कर गया ना ये, तो फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। I used to emotionally blackmail my parents for this.
1: तो पढ़ाई में आप कैसे थे?
0: मैं actually पढ़ाई में काफी अच्छा था। I had a very analytical brain, like maths, physics. So उन चीजों में काफी अच्छा था। In fact, now I think कि एक्टिंग में भी वो मुझे बहुत हेल्प करता है।
1: सो फिर जब

0: एक्टिंग का सोचा है, थिएटर ज्वाइन किया, तो कब वो मोमेंट आया जब लगा कि नहीं अब इसी रास्ते पर चलना है, जॉब को पीछे छोड़ देते हैं और नई डायरेक्शन पकड़ लेते हैं लाइफ में, कब लगा ऐसा?
1: Like I told you, after that mother's death, I was doing that. But a day happened when जब मैं सोच रहा था मैं करूं या ना करूं. And that day when I was going to office, मेरा एक्सीडेंट हो गया ऑटो से. And for me, in my mind, it was happening in slow motion. धीरे धीरे ऐसा हुआ. And I thought I lost my life. But I did not. But मुझे जवाब मिला एक. तुम रिस्क एनालिसिस कर रहे थे.
0: Okay.
1: जिंदगी खत्म होने वाली थी.
0: Okay. वो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड यहाँ पर चला.
1: रिस्क एनालिसिस का मतलब ही चेंज हो गया. एंड मैं नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया.
0: तो हम आपके इंट्रोडक्शन में एक्टर, राइटर और रिस्क टेकर भी जोड़ सकते हैं.
1: मेरी कहानी पूरी फिल्मी है
0: जी,
1: तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट आएंगे. मैं तो घंटों बात कर सकता हूँ, बहुत फिल्मी कारनामे किए हैं मैंने. लाइक मुझे तो कभी कभी लगता है मैं रियल लाइफ में भी डायलॉग बोलता हूँ. लाइक नॉर्मली बात नहीं करता हूँ. लाइक माई पेरेंट्स एंड पीपल क्लोज टू मी दे क्रिटिसाइज.
0: तो ऑफ कैमरा भी हम कह सकते हैं कि निलय एक्टिंग करते रहते हैं.
1: हाँ ऑफ कैमरा ही मैं एक्टिंग करता हूँ.
0: अच्छा.
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ.
0: ओके, बट आई होप यहाँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं अभी.
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ, कैमरा ऑन है.
0: ऑलराइट, अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने ज्वाइन किया थिएटर और इससे आगे बढ़ने की सोची. तो डेफिनेटली सबका सपना होता है कि मुंबई जाना है, माया नगरी बोलते हैं. अब यहाँ पर आना और स्ट्रगल करना, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है पर बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपने डिसीजन फाइनल लिया फाइनली, तो क्या फैमिली का सपोर्ट मिल गया? उन्होंने कहा खुशी खुशी जाइए मुंबई में और अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए, ऐसा कुछ था? जा निलय जी ले अपनी जिंदगी, समथिंग लाइक दैट?
1: नहीं नहीं नहीं, अमरीश पुरी जी नहीं थे मेरे डैड. सो थिंग इज, लोगों को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो. एंड दे वुड हैव स्टिल सपोर्टेड मी अगर मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता. मैं डायलॉग मार के आ गया ना, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की. मैं खुद से अचीव करके आऊंगा.
0: कदम कदम पर एक्टिंग की है आपने.
1: तो ये जो मैंने बोल दिया ना, ये लाइन मुझे हॉन्ट किया है बहुत बार.
0: तो
1: जब पैसे खत्म हो गए,
0: यस, अब वापस
1: क्यों बोला था मैंने? मैं मांग लेता ना, क्यों बोल के आ गया मैंने.
0: So, एक रिस्क लिया, मुंबई आ गए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था? कहाँ रहेंगे, खाना पीना, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इतनी जल्दी काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑडिशंस की लंबी लंबी लाइनें. So, कैसे प्लान किया वो सब?
1: शुरू में ये प्लान ही नहीं था. शुरू में प्लान था एक्टिंग कोर्स करूंगा.
0: ओके.
1: एंड आई हैड दिस थिंग, मैं जो भी कोर्स करूँ या कोई भी पढ़ाई करूँ, आई वॉन्ट टू बी द टॉपर.
0: ओके.
1: And I had that this thing कि मुझे करना ही है. And वहाँ भी I was one of the toppers. And मेरे mind में तो मैं निकलूँगा producers.
0: अच्छा, line लगी होगी producers की आराम से.
1: I'll choose. मेरे दिमाग में था कि ठीक है यार, comedy नहीं करना है.
0: Okay.
1: थोड़ा serious से start करते हैं, comedy बाद में करेंगे for a change.
0: Lots of scripts are there. You know, let me just pick and choose. Okay.
1: मैं दिमाग में calculate करता था कि ठीक है, देखना, you know, stereotype मत हो जाना शुरू में ही. ठीक है, एक ही टाइप के रोल मत करना. मैं अपने दिमाग में ये सब प्लानिंग कर रहा था.
0: तो अपने दिमाग में आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, क्योंकि बचपन से ऑलरेडी काफी एक्टिंग कर ही ली थी आपने. ओके.
1: मैं निकल के भी था, प्रोड्यूसर्स नहीं पहचाने थे, उनकी गलती थी.
0: सो एक्टिंग जब आपने सीखी, सो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर एक्ट करते वक्त पहली बार ना सुनने को मिला होगा, ये अच्छा नहीं किया, तो वो जो टॉपर माइंडसेट है उसको कहीं धक्का लगा, अरे मैं तो हमेशा सबसे आगे, अभी क्या हो गया?
1: देखिए, ना सुनना ये बात पे कि ये अच्छा नहीं किया, उससे पहले मुंबई ने बहुत ना सुना दिया.
0: जैसे
1: आप लाइन में खड़े रहते थे वहां ऑडिशन के लिए, एंड द वे एक न्यूकमर को, एक्टर को वहां ट्रीट किया जाता है, फिट फिट फिट, नॉट फिट. एक जगह ऐसे बोला, हटो, क्या करके आ रहे हो, बोला ना नॉट फिट, हटो. आई मीन मैं तो शॉक में था शुरू में, ये क्या, ऐसे क्यों बात कर रहे हो भाई, और अगर मैं बन गया तो
0: तो ऐसे जब ना सुनने को मिलता है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि आप एक अनजान शहर में हैं, फैमिली भी साथ में नहीं है कि घर चले जाएं तो थोड़ा वो पैम्पर कर दें, ऐसे वक्त में कैसे खुद को संभालते हैं, स्पेशली एज एन आउटसाइडर, आप एक छोटे शहर से आए हैं, बहुत सारे सपने हैं आपके, बट द वर्ल्ड इज नॉट वेरी काइंड टू यू.
1: मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, और मैं मानता भी हूँ कि एक एक्टर को अच्छा एक्टर बने रहने के लिए ना वल्नरेबल होना बहुत जरूरी है. तो वो मैं छोड़ नहीं सकता था, और मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ. मैं तो इनफैक्ट बहुत बार रोता हूँ.
0: तो इस माया नगरी में जहाँ पर कई प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इमोशनल होना एक वीकनेस नहीं माना जाता?
1: माना जाता, लोग मानते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस है. इनफैक्ट मैं जहाँ से आया हूँ, मैं छोटे जगह से आया हूँ, वहाँ तो रोना बाई अ मर्द इज नॉट कंसिडर्ड गुड. मर्द होके रो रहे हो भाई,
0: आप रोते हैं?
1: मैं तो सिनेमा देख के रो देता हूँ. मुझे लगता है अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोना. आई मीन आई थिंक दैट इज ब्रेव. एंड व्हाई टू टर्म इट कि मर्द होके, उसमें तो बहुत सारे कंसेप्चुअली गड़बड़ है कि ओके मर्द आर सपोज टू बी ब्रेव. नो आई डोंट थिंक सो. आई मीन इवन अगर आप बायोलॉजिकली यू नो हिस्टोरिकली भी देखिएगा, आई फाइंड वुमेन आर ब्रेवर देन मैन. दे हैव ऑलवेज बीन. There's a reason God, Prakriti, science, किसी ने, I mean, they have given women, you know, the right to give birth.
0: So women express themselves very beautifully, you know.
1: Yeah.
0: अपने दोस्तों से बातें कर ली, रो लिया, खुद को कहीं ना कहीं वे एक्सप्रेस करती हैं. आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो जब डाउन फील करते हो, लो फील करते हो? What's your coping mechanism?
1: And you know, I just go quiet. Maybe I cry sometimes and I start expressing it. Sometimes
0: लिखते,
1: I
0: लिखते भी
1: हाँ कभी कभी लिखने लगता हूँ. In fact, एक बार बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हुआ था. मैं अपने घर में बैठा हुआ था, बाहर की तरफ देख रहा था. I had tears in my eyes and I just wanted to express. And मैंने कुछ लिखा था. If you permit,
0: please,
1: मैं सुनाना चाहूंगा. And उस समय मेरा बहुत डाउन चल रहा था. You know, I was going through that phase ki kuch to ho hi nahi raha hai. How do I fight?
0: Mumbai mein the aap?
1: Mumbai mein, haan. Tab maine likha tha, aansuon ko behne do, sailab to ab yahi layenge. Adhoore se jo khwab reh gaye the, use pura yahi karayenge. Dard jo liya hai udhar mein, ab uska karz utarna hai. मुस्कुराहटों के पीछे जो छुपा रखे हो, अब उस समुंदर में डूब जाना है. तेज लहरें आएंगी, मझदार में तुम फंस भी जाओगे, लेकिन उसका सामना ही ना किया तो कभी तैरना ना सीख पाओगे. दुनिया की बातों पे जो एतबार करने लगे हो, शायद खुद से ही थोड़ा कम प्यार करने लगे हो. कभी आंखें मूंद करके देख लो, शायद वो अनदेखा सच देख पाओगे. अंधेरे में जो देखना सीख लिया, शायद मन के उस शांत पुकार को भी सुन पाओगे. आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे.
0: That's very, very beautiful. बहुत deep है. मुझे लगता है कि शायद मैं poet word miss कर गई आपके introduction में. आप बहुत अच्छा लिखते हैं. और I think मैं अब make out कर सकती हूँ कि कैसे आप उन low moments से खुद को उबारते हैं, बाहर लेकर आते हैं. आप एक emotional व्यक्ति हैं, आपने बताया
1: जी.
0: लेकिन ये जो आपके emotions हैं, आपकी जिंदगी के experiences हैं, क्या आपको acting में help करते हैं? आपने कहा आपने acting सीखी है
1: जी.
0: तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या acting सीखना जरूरी है? सीख कर आप अच्छे एक्टर बन जाते हैं, ये ऐसे ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, जिंदगी के अनुभवों को अपने आगे रख के आप अच्छे एक्टर बनते हैं? क्या है ये अच्छा एक्टर बनने का फॉर्मूला?
1: देखिए, अच्छा एक्टर बनना या किसी भी फील्ड में एक्टिंग, किसी भी फील्ड में अच्छा करना, बेसिकली आप बात करना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में नॉलेजेबल इनफ होना
0: जी.
1: तो उसके लिए आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा, बट उस सीख को कैसे आप परसीव करते हो. जैसे अगर एक्टिंग में देखे, बहुत सारे थ्योरीज है, माइजनर
0: जी,
1: मेथड एक्टिंग, स्टीफन बुक, मैंने सब पढ़ा,
0: बट
1: अगर मैं उसको एब्सोल्यूट ले लूं कि दैट इज नॉलेज, तो मैं वहीं पे फंस गया. दैट इज अ परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन,
0: राइट?
1: उनका एक्टिंग का परसेप्शन है. मैं

0: पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो उनका सोच किधर जा रहा है.
1: राइट.
0: अगर वो इंफॉर्मेशन लेके मैं अपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ के साथ कंबाइन करूंगा ना, तब शायद नॉलेज की तरफ बढ़ पाऊंगा. पर अगर उसको मैं फिक्स कर लिया, डिफाइन कर लिया कि यही सच है, तो मैं वहीं पे बंध गया. तो एक्टर तो छोड़ो, आप एक्टिंग तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे.
1: तो कभी ऐसा हुआ कि एक्टिंग करते करते कुछ ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपको लगा कि अभी इससे बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, आप कुछ ज्यादा ही आप उसमें इन्वॉल्व हो गए कि कहीं ना कहीं आप उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगे?
0: अभी हमारी जो सीरीज है हेलो हम बोल रहे हैं
1: जी, इस पर हम बहुत विस्तार से भी चर्चा करेंगे. जी बताइए.
0: उसमें सुष्मिता मुखर्जी जी, शी प्लेड माय मदर, एंड एक बहुत ही इमोशनल सीन है बिटवीन पप्पू एंड
1: पप्पू योर कैरेक्टर.
0: वो उनका एक बहुत ही इमोशनल सीन है सुष्मिता जी के साथ
1: जी,
0: एंड इट एंड्स विद अ ना बहुत ही प्यारा सा हग. माँ उसको ऐसे करती है एंड पप्पू उसके गोद में है. And I was acting, and suddenly when that hug happened, na, I remembered a feeling, जो शायद बहुत सालों से नहीं किया था.
1: आप miss कर रहे थे.
0: Yeah, miss क्या? वो महसूस जो है ना, वो एहसास. समय में भूल रहा था. And अचानक से वो एहसास जो feel हुआ ना, I remembered. Oh, okay. I used to have that. So that was something, you know. अच्छा भी लगा, हैवी भी लगा, एंड देन कट.
1: तो कट के बाद उस जोन से बाहर आने में टाइम कितना लगा?
0: सी दिस पर्टिकुलर इमोशन आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड, नाउ आई नो इट हैज, मतलब शुरुआत में ऐसे जब भी हुआ तो मैंने अपने अपने तरीके बनाए निकालने के. बट बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो मुझे इफेक्ट किए हुए.
1: Okay.
0: I mean, वायम मूवी अगर
1: वायम पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पहला प्रोफेशनल जो असाइनमेंट था आपका एक्टिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे मिला, कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनली आपने एक्टिंग सीख ली और कुछ अपने इमोशंस से उसको निखार भी लिया. तो पहला असाइनमेंट क्या था?
0: Okay, मैं जब बैरी जॉन से निकला तो मुझे तुरंत एक असाइनमेंट भी मिल गया था. एंड मुझे लगा हो गया. यही तो मैं बोल रहा था तुम लोगों को,
1: चाहिए था
0: चाहिए था, दूर की बात है. मैंने तो बोल दिया था, तुम ही नहीं सुन रहे थे. मैं क्या, देखो
1: ओके
0: अब आगे देखना. वो सुपर फ्लॉप हो गई. शायद किसी ने नहीं देखा.
1: ओके, तो किसी ने नहीं देखा,
0: तो मैं उसको एक्टिंग डेब्यू ही नहीं माना.
1: अच्छा ठीक है, तो आप बताना चाहेंगे वो क्या था कि ढक्के रखना चाहेंगे उसके राज की तरह?
0: जब किसी ने देखा ही नहीं तो मैं तो
1: शायद आप देख लें.
0: डेब्यू अभी कर रहा हूँ.
1: ओके, सो फिर यानी बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं, यू नो, और एक्टिंग जॉब्स आते हैं जो एक एक्टर करता है, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है. व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू फाइनली रियलाइज दैट नाउ आई हैव अराइव्ड? Was it Vayam?
0: I still don't think I've arrived.
1: Okay.
0: But at least Vayam gave me something जो industry के अंदर, industry के अंदर जब जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि 14 साल में आपका network बन जाता है. You start, you know, hanging out with people. फिर वो देखे, फिर वो दूसरों को देखे, दिखाए. एक industry के अंदर network बनता है. तो उनके अंदर ये belief हुआ कि अच्छा ये ऐसे ही नहीं है, ये तो अच्छा actor है. Right. उससे पहले इट वॉज लाइक कि हाँ अच्छा है, हर जगह टॉप किया है, ये किया है. बट वयम ने उन्हें कुछ और एक प्रूफ दे दिया.
1: वयम आपकी जो सीरीज है उसमें आपने 10 डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, एंड जब मैंने वो देखी तो मुझे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल संजीव कुमार जी की मूवी नया दिन नई रात. कहीं ना कहीं मैं उसे रिलेट कर पा रही थी. उसमें उनके 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वहां पर भी नवरस की बात होती है, बट वयम समवेयर इज अ बिट डार्क. So, कैसा था वो एक्सपीरियंस? और क्योंकि अभी आप इतने ज्यादा अनुभवी नहीं हुए हैं इस फील्ड में, और वयम जैसा आपको एक उस मूवी में एक किरदार निभाने को आपको मिला, इतने डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रे शेड्स भी हैं. कभी ऐसा हुआ कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या अभी आई नीड मोर ट्रेनिंग, आई नीड मोर एक्सपर्टीज, कुछ ऐसा मोमेंट आया?
0: नहीं, ये कभी नहीं आया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा.
1: ओके.
0: Because that I knew when Vayam was written, I knew, I told Abhyank, जो director है, उनको I told him कि मैं award लेके आने वाला हूँ इसमें. I told him that time only, बनाने से पहले कि मैं इसमें award लेके आऊँगा. वो भी बोले कि हाँ पता है, वो तो आप लेके आओगे.
1: Right.
0: And I won 3 Best Actor awards. मैं

0: तीन चीजों, एन ऑडियंस, अ राइटर एंड एन एक्टर. एज एन ऑडियंस आई लव रोमांटिक कॉमेडी.
1: ओके,
0: आई लाइक रोमांटिक कॉमेडी, इवन गोविंदा वाली कॉमेडीज. आई वॉच दोज कंटेंट्स.
1: ओके,
0: एज अ स्क्रिप्ट राइटर आई हैव अ विजन. मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखे हैं और वो है चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को. एज एन एक्टर मैं जज नहीं कर सकता हूँ कैरेक्टर को.
1: हम सबके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी लाइफ में, जब बहुत इट गेट्स टू मच, तो फिर कोई वेकेशन पर चला जाता है, कोई रिलैक्स करता है, सो जाता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो थेरेपी की तरह होता है.
0: या लेटली आई मीन आई गो ट्रैवलिंग. इनफैक्ट तमाशा मूवी आपने देखा है? उसमें हाय आई एम वेद.
1: यस
0: आई डू दैट.
1: ओह वाओ, दैट्स नाइस.
0: दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड. दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड, आई नो, बट ठीक है, क्योंकि अब मैंने वो डायलॉग खत्म कर दिया ना कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा.
1: जी
0: वो डायलॉग दैट डजंट स्टैंड एनीमोर.
1: तभी वापस
0: अब मैं ले सकता हूं आपसे.
1: यानी वापस जाने का स्कोप है, ले सकते हैं जाके.
0: हाँ हाँ, अब ले सकते,
1: अब ले सकते हैं.
0: तो अब क्या है कि जरा मैं घूम के आता हूँ, पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ, कार्ड दे देना बस.
1: तो घूमते घूमते आप निकल गए ओटीटी पीबी वेव्स की तरफ और किया हेलो हम बोल रहे हैं. तो हेलो हम बोल रहे हैं कि जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं.
0: तो पप्पू प्रसाद पांडे एकदम ही केयरफुली लड़का है, जैसे गाँव के लड़के होते हैं. तो एक ऐसा इंसान, एक दिन उसके दोस्तों ने उन्हें बोला कि भाई तेरे पास लड़की क्यों नहीं है. एंड उस चैलेंज में एक दोस्त ने मास्टर प्लान निकाला कि मैं 100 लड़कियों के नंबर ला रहा हूँ.
1: अच्छा,
0: एक ना एक तो कोई लड़की तुमको प्यार हो ही जाएगा, एक ना एक भाभी होगी.
1: अच्छा.
0: एंड उसी बकवास में ना ही एक्सीडेंटली कॉल्स अ गर्ल हु इज द हीरोइन ऑफ द शो, पाखीदारी प्रतिभा तिवारी. And then everything takes a political angle.
1: Political angle. Political angle. It's comedy.
0: अगर आप ट्रेलर देखे ना, उसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया ये है क्या. क्या ये कॉमेडी है, क्या ये फैमिली ड्रामा है, क्या ये पॉलिटिकल एंगल है.
1: अब तो मुझे सस्पेंस भी नजर आ रहा है इसमें.
0: क्या ये सस्पेंस है? ये हमारी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी, अगर मैं आपकी जिंदगी को जॉनर दे दूंगा, ठीक है, आपकी जिंदगी रोमांटिक है, आपकी जिंदगी पॉलिटिकल, कैसा लगेगा आपको? वैसे ही ये पप्पू प्रसाद पांडे, पाखीधारी, पवन, सिंदूरी पान सिन्हा जो यशपाल जी प्ले कर रहे हैं, मेरी माँ सुष्मिता मुखर्जी, ये इन सब की कहानी है
1: जी.
0: कोई भी कहानी को जॉनर क्यों देते हो? कहानियां तो बस कहानियां होती है, उसमें हर जॉनर आते हैं. हमारे जिंदगी में दिन भर में 10 जॉनर आते हैं. तो वैसे ही हेलो हम बोल रहे जॉनरलेस है, बस कहानी है.
1: और ये कहानी बहुत रिलेटेबल भी है, गांव देहात की कहानी. यहाँ पर इमोशंस है, आपस में बॉन्डिंग नजर आ रही है फ्रेंड्स की. आपने एक मदर और सन के रिलेशनशिप की बात करी और फिर वो जमाना जब कॉल कर आप यू नो मिस कॉल में हम सोचते मिस कॉल देंगे, ब्लैंक कॉल करेंगे और आवाज सुनेंगे. तो ये जो है, हम जब आज बात करते हैं इंक्लूजन की, हर कोई वो कंटेंट देखना चाहता है जो रिलेटेबल हो. एक यूथ को उसके जैसा कंटेंट चाहिए, एंटरटेनिंग या एडवेंचरस. और जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनको उनके जैसा कंटेंट चाहिए. गांव देहात के लोगों को भी अपनी भाषा, अपने जैसा कंटेंट चाहिए. सो इसमें किस तरीके से वो एक एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, उस चीज को कैसे जिया आपने, कितने अपने पर्सनल एलिमेंट्स आपने पप्पू प्रसाद पांडे जी में डाले?
0: काश काश पप्पू प्रसाद पांडे जो काम करते हैं वो मैं कर पाता.
1: जी.
0: वो मैं बस माइंड में करता था बचपन में. ओके, साइकिल पे आगे लड़की को बैठा के घुमाना वो सब नहीं कर पाता.
1: अब रोड्स पे करना भी मुश्किल हो गया एक्चुअली.
0: हाँ, दिमाग में तो करते कितने बार किए होंगे बचपन में, पर वो होता नहीं था.
1: जी.
0: तो जैसे हमारे सेट पे भी हुआ था ये बात कि साइकिल पे आगे चलाना था और मुझे साइकिल चलाना उतना अच्छे से आता नहीं था.
1: पूछने वाली थी, साइकिल चलानी आती है?
0: बचपन में मैंने चलाया था, पर किसी लड़की को तो आगे नहीं बैठाया.
1: अच्छा, उन्हें एक्सपीरियंस था.
0: हाँ, तो मैंने बोला प्रैक्टिस करना है और उन्होंने प्रैक्टिस करा दिया.
1: ओके.
0: बर्थडे से सही से पूछो, मैंने ये नहीं बोला था हीरोइन के साथ प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए.
1: ओके.
0: तो वो एक्सपीरियंस इज नॉट द सेम, बट इट वाज फन. इट वाज फन. आई वाज ट्राइंग टू से, हाँ, पप्पू प्रसाद पांडे जो है, मैं कॉलेज लाइफ में ना जो थोड़ा केयरफ्री था एंड थोड़ा बिंदास था.
1: अरे, गांव की जो स्लो लाइफ होती है, उस स्लो लाइफ में रहने वाला इंसान, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, अपनी मस्ती में जी रहे हैं, वैसा है.

0: हाँ वैसे ही है, वैसे ही उन लोग, आई मीन उसमें डायलॉग है, चल भाई काम करने चलते हैं। हाँ चल, क्या काम? चाय पीने।
1: अच्छा, या वो देख लेंगे क्या करना है।
0: चलो तो सही, देखो तो सही, चाय पियो तो सही,
1: काम भी निकल जाएगा,
0: हो जाएगा, हो जाएगा, काम क्या करना।
1: अभी आपने कहा कि हीरोइन की जगह असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए साइकिल पर बैठने के लिए। अभी जब हीरोइन बैठे होंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग हो गया होगा सीन। मैं जानना चाहती हूँ एक एक्टर के लिए उसके जो को एक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है परफॉर्मेंस को अच्छा करने में, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में।
0: देखिए ये जब मैंने एक्टिंग शुरुआत किया था ना इवन बैरी जॉन में, मैं बहुत अच्छे मोनोलॉग्स देता था। At the risk of not sounding very humble, I was once termed king of monologues.
1: Okay, great.
0: Yeah. But giving a monologue is something else. Owning a stage, you performing, वो था। लेकिन जब आपको सीन करना होता है ना तो एक दूसरा इंसान भी है
1: जी।
0: अब यहाँ आप अपना मोनोलॉग नहीं दे सकते हो, आपको समझना होगा। तो मैं शुरू में जब करता था और अगर दूसरा एक्टर वीक है तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं, हमारा सीन खराब हो गया।
1: okay.
0: और मैं खुद में सोचता था यार काश ये अच्छा एक्टर होता या होती, अच्छा सीन हो जाता।
1: लेकिन तो आज रीटेक ले ले,
0: रीटेक अगर वो उन्हें उतना इमोशन ही देने नहीं आता है या वो उतने अच्छे एक्टर ही नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा।
1: तो कम्युनिकेशन करना, बताना उनको इजी होता है?
0: मैं नहीं बताता था ना, मैं क्यों बताऊंगा, डायरेक्टर का काम है। बट ये एक्टर्स का, एक एक्टर दूसरे एक्टर को ये नहीं बोल सकता है भाई, थोड़ा एक्टर्स का ईगो होता है।
1: ओके,
0: सो तारीफ कर सकता है, बुराई नहीं।
1: अच्छा, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता?
0: क्रिटिसाइज नहीं, दे टेक इट पर्सनली। सो अब एक दूसरी बात समझ में आई है कि एक्टर वीक कोई नहीं होता है, ठीक है, आपका परसेप्शन है। हो सकता है वो एक्टर कम इमोशन दे रहा हो सकता है वो फंबल कर रहा हो। व्हाट इफ मेरा जो पर्सन सुन रहा है उसको, वो उसको वैसे ही रिसीव करे जैसे वो पर्सन बोल रहा है या बोल रही है। अगर आप अपना रिसेप्शन चेंज कर दोगे ना, आपका एक्टिंग शायद उतना अच्छा ना लगे जितना आप करने वाले थे
1: जी,
0: पर उसका एक्टिंग अच्छा लगने लगेगा और उससे सीन बेहतर हो जाएगा।
1: राइट
0: और अगर सीन बेहतर हुआ, प्रोडक्ट बेहतर हुआ, फिल्म बेहतर हुआ, तो फिर आपका भी फायदा।
1: बिल्कुल।
0: तो अब ये बात समझ में आई है कि हर जगह आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते।
1: Yeah, it depends a lot on the other person as well.
0: Right. Sometimes taking a back seat for the film. Because I come from that thought process कि मैं अभी भी old school हूँ, कर्म ही धर्म है। मतलब फिल्म मेरे लिए भगवान है, that's it.
1: जी।
0: I cannot compromise with it. So फिल्म का फायदा होगा, मेरे भगवान का फायदा होगा, you know, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है।
1: तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता लाइफ कम्स ए फुल सर्कल, बचपन में दूरदर्शन देखना और आज पीबी वेव्स के साथ जुड़ना, हेलो हम बोल रहे हैं के जरिए। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस लाइक जस्ट यू नो एक स्क्रीन पर आप सोचते थे कि आप भी जाएं एक्ट करें, शक्तिमान आपने बताया, चंद्रकांता आपने बताया, और आज पीबी वेव्स के साथ आप जुड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
0: एक्सपीरियंस मेरे लिए तो आई एम रियली थैंकफुल टू पीबी वेव्स। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूरदर्शन प्रसार भारती डिजिटलाइज हो गया
1: जी।
0: सो पीबी वेव्स इज लाइक द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप ऑफ इंडिया, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और मुझे पीबी वेव्स का ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे ना बहुत सारे रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हैं
1: जी,
0: तो बहुत सारे जो प्राइवेट एप्स है वो वहां पे नहीं खुलते, कहीं खुलते कहीं नहीं खुलते
1: जी।
0: बट इफ यू नो पीबी वेव्स इज प्रेजेंट इन लाइक I think 137 countries or 138
1: countries. Well, now it's digital, so you can access it anytime, anywhere.
0: No, but there are many apps, private apps.
1: Yeah. You,
0: India ke bahar accessible nahi.
1: Haan, exactly.
0: So all my, bahut saare relatives and all, wo log complain karte rehte hain, but this, everyone is able to watch.
1: So views badh rahe hain fir.
0: Views badh rahe hain, and jaisa ki aapne bataya, main DD1 pe wait karta tha, कि आज कोई नई मूवी लगाने वाला है, उसमें दिखाते हैं ना एड कि ये मूवी आने वाला है, किसी दिन कोई नई मूवी, नई मूवी मतलब बस एक ही दो साल पुरानी मूवी, दैट वाज न्यू मूवी।
1: सो मुझे लगता है कि आप काफी ब्लेस्ड हैं क्योंकि रेडियो पर गाने सुने तो आज आकाशवाणी में बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, दूरदर्शन पर मूवीज

0: देखिए और पीबी वेव्स पर खुद एक्ट भी किया। मैं एक चीज यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और हर तरह की सीरीज होती हैं, इस सीरीज में ऐसा क्या खास है, कोई इसे क्यों देखे, क्या यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करके इसको बनाया गया है, मैं इसको क्यों देखूं, और क्योंकि वो भी तब जब भैया जी कौन है ये मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है।
1: देखिए ये मुझे तो आप इसलिए, मुझे लगता है आप इसलिए देखिए ना कि हर जगह बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आइए ना, चाय पी के गप हो रहा है
0: जिसकी बहुत जरूरत है, एक लग्जरी एक्चुअली है।
1: कुछ कोई बहुत चीजों का तो मतलब नहीं है। अब इस सीन का क्या मतलब है भाई, ये 100 नंबर लाए हैं, कॉल करो एक ना एक तो भाभी निकल जाएगी। और वो कॉल किए जा रहे हैं, कोई किसी को लग जाता है कॉल, वो एंड पप्पू प्रसाद पांडे, हेलो हाँ कौन बोल रही है उधर से, जल्दी बताइए, जल्दी बात कीजिए, हमको स्कूल निकलना है। ईच वन टर्न्स आउट टू बी अ स्कूल गोइंग गर्ल एंड दे आर लाइक शॉक एंड देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग कि अच्छा ये तो गुनाह हो गया।
0: तो कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए और यहाँ पर इस कोश शूट करते वक्त,
1: शूट करते वक्त फनी इंसिडेंट्स बहुत हुए। वन थिंग आई रिमेम्बर वाज दैट साइकिल शॉट आई वाज सेलिंग। हाँ, तो वहां पे ना जब एडी को एन ऑल प्रैक्टिस कराता था, एवरीवन यूज्ड टू लाफ। गांव था, कर क्या रहे कर क्या रहे, मना क्या रहे हो, हीरोइन की जगह इसको, ही वाज अ वेरी स्वीट एडी बट स्टिल। एंड देयर वाज अ थिंग, सब मुझे बोलते थे हो हीरो, हीरोइन को गिरा मत देना, साइकोलॉजिकल प्रेशर था, गिरा मत देना।
0: तो आप कह सकते हैं आप हीरो बन गए हैं जो आप हीरो बनना चाहते थे।
1: हाँ, सो हेलो हम बोल रहे हैं, आई फेल्ट लाइक अ बिट हीरो
0: हीरो
1: वायम, आई वाज जस्ट एन एक्टर, अ गुड एक्टर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग 10 कैरेक्टर।
0: और अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, व्हाट्स नेक्स्ट?
1: That's not पप्पू प्रसाद, पप्पू प्रसाद पांडे का कोई अपकमिंग
0: प्रोजेक्ट,
1: पप्पू प्रसाद पांडे का भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है।
0: okay, yes.
1: लड़की को भगाओ लड़की और चाय पियो, वो पप्पू के अपकमिंग प्रोजेक्ट है।
0: okay,
1: जो ज्यादा क्रिटिकल है। और मेरे भी एक दो है छोटे मोटे, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज पप्पूज बट है छोटे मोटे। सो आई एम फाइनली डेब्यूटिंग इन अ फिल्म एज अ लीड
0: एंड
1: फाइनल शेड्यूल अभी आई थिंक अक्टूबर में होना चाहिए।
0: जी.
1: I haven't got the dates, but that would be my debut.
0: Wow, that's very nice. अच्छा, एक और बात की जाती है इंडस्ट्री में, आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड,
1: राइट?
0: कहीं ब्रेक ले लिया, थोड़े दिन नजर नहीं आए तो इंडस्ट्री भूल जाती है आपको। सो फेम चाहिए या सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक एक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस कुछ भी करते रहो, बने रहो, साइट में रहो, नजरों में रहो, या थोड़ा सस्टेनेबल हमें रहना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो पिक एंड चूज करने की लिबर्टी होती है।
1: नहीं नहीं, सस्टेनेबिलिटी अगर आपको करना है तो थोड़ा फेम तो चाहिए, फेम के बिना आप सस्टेन कैसे करोगे? लाइक यू नीड, क्योंकि फेम के साथ मॉनेटरी सक्सेस भी आएगा। तभी आई मीन सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको आपको पता है पीआर मार्केटिंग ये सब पे खर्च करना होता है, बिकॉज दैट्स हाउ एन एक्टर स्टेज इन लाइमलाइट। तो नहीं तो वो नहीं तो फिर पापा को कॉल करो।
0: पापा को कॉल करो से याद आया कि अब पापा क्या सोचते हैं, पापा का विजन अब कैसा है आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेकर? उस टाइम तो आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा होगा, किसी भी पेरेंट के लिए होता है कि जॉब छोड़ दी, स्टेबल जॉब छोड़ दी, कहाँ जा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाने जिसका भरोसा नहीं है। सो अभी वापस जा सकते हैं? अभी लाइक हाउ डू दे सेलिब्रेट योर सक्सेस?
1: सी अगेन, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर, दे आर नेवर गोइंग टू टेल मी, माई डैड इज नॉट गोइंग, तो बहुत अच्छा एक्टर ये है, बट आई गॉट टू हियर इट फ्रॉम समवेयर, ही वॉज टेलिंग समवन, ओ सुनो हीरो के पापा हैं।
0: अरे वाह। सो आपको कैसा लगता है अब जब लोग आपको, आपके फादर को कह रहे हैं हीरो के पापा हैं, आपको हीरो कह रहे हैं, आपकी इस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर यू हैप्पी नाउ? आपको लगता है कि हाँ वो मोमेंट आ गया जब ये सेलिब्रेशन लॉन्ग ड्यू था, बनता था, यू आर कंटेंट नाउ?
1: मैंने सोचा था मैं उतना खुश रहूंगा, पर मैं अभी हैप्पी नहीं हूँ, मैं आगे का सोच रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं अभी हैप्पी रहने का। सो समटाइम्स व्हाट यू वेट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ, जब आ जाता है ना तो शायद आपके पास वो वक्त नहीं होता है सेलिब्रेट करने का।
0: और कभी ऐसा नहीं लगता कि चलो आज तो सब पहचान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर क्यों नहीं विश्वास किया जब मैं बहुत डिटरमिन्ड था कि मैं कर सकता हूँ। उस

0: क्यों नहीं सपोर्ट किया? कहीं ना कहीं वो मन में रहता है, कसक सी रहती है मन में.
1: यू नो दैट्स द वर्स्ट पार्ट, दैट्स द वर्स्ट पार्ट. आई होप समडे इट हैपेंस दैट पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द जर्नी. मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं कांग्रेस एंड ऑल,
0: राइट.
1: काश वो उस समय आए होते जब मैं डिप्रेशन में था, मैं फाइट किया, तब काश आ जाते कांग्रेस यू वॉन योर फाइट अगेंस्ट दैट डिप्रेशन, कांग्रेस यू टुक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर जर्नी,
0: राइट.
1: काश ये मैसेजेस आए होते. ये मैसेजेस भी अच्छे हैं, आई फीलिंग गुड, पर काश उस समय भी आए होते.
0: तो अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं तो अच्छा लगता है, और जब कोई क्रिटिसाइज करता है तब कैसा लगता है?
1: वो गलत है, गलत है. उसको पता नहीं है.
0: अच्छा, उसको पता नहीं है. यहाँ सब ठीक है, उसको पता नहीं है.
1: क्यों यार? जाओ थोड़ा स्टडी करके आओ.
0: ग्रेट, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, यू नो, अपने आप को खुश रखने के लिए. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. हाउ डू यू सी योरसेल्फ इवॉल्विंग एज एन एक्टर, लेट्स से ज्यादा लंबा टाइम ही लेते, 3 years डाउन द लाइन?
1: क्या 3 years डाउन द लाइन तक तो
0: 14 years की ऑलरेडी जर्नी हो चुकी है.
1: 3 years down the line.
0: चलिए 5 years कर देते हैं.
1: हाँ, 5 years. See, I'll tell you one thing. As an actor, मैं रोज ग्रो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रोज नया एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ. But if you mean the success aspect of it, I'm not going to define it. अगर मैं words में put करूँ, words limited है. It's going to be defined. For me, it's a feeling. तो मुझे पता है, मुझे feel होता है, लेकिन उसको मैं words में put करके छोटा नहीं करना चाहता. So for me, it's that. That is the success,
0: right,
1: which is undefined, which is made of, you know, not just achievements. It is also made up of failures, journey. And failures are the most important thing. Because that is unique. That is different. From your failures. Success ka generally log ek mapdan diye hue hai ki ye hai success. Failures ka koi mapdan nahi hai. सबके अलग अलग फेलियर है.
0: तो चलिए, आज आप एक एक्टर हैं, सक्सेसफुल हैं, और आगे सक्सेस मिलेगी. हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, अगर अगर एक्टर नहीं बन पाते इतनी यू नो स्ट्रगल के बाद भी, तो क्या वापस इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ लेते?
1: क्रिकेटर बन जाता. थोड़ा लेट हो गया हूँ, मे बी फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता, स्पिन कराना पड़ता,
0: राइट,
1: तो वो बन जाता.
0: चलिए, यानी आपने एक बैकअप प्लान रखा हुआ था.
1: हाँ हाँ, क्रिकेटर तो मैं मेरा पहला ऑप्शन था.
0: okay.
1: फिर मुझे पता चला मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो
0: एक्टिंग कर लेते.
1: एक्टिंग कर लेते, लाइक एनी इंडियन किड, क्रिकेट एंड फिल्म.
0: सो हमारी कंट्री में क्रिकेट और फिल्म बहुत पॉपुलर है, सबकी पहली पसंद यही रहती है. लेकिन सबकी पहली पसंद उनकी पहली जॉब बन जाए जरूरी नहीं है. बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, मुंबई आते हैं, या मैं कहूँगी कि दिल्ली में भी आते हैं, यू नो, कि हम एक्टिंग करेंगे, हम थिएटर ज्वाइन करेंगे, और कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते. तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे, आपकी जर्नी से वो क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या टेक अवेज रहने चाहिए जो आपने खुद महसूस किया?
1: देखिए, मेरे जर्नी से एक्चुअली मुझे पता कोई नहीं सीखने वाला है, कोई दूसरे के जर्नी से सीखता नहीं है. मैं बहुत चीज़ें बोल दूंगा, बट कोई दूसरे के जर्नी से एक्चुअली सीखता नहीं है. गलतियां करना ज़रूरी है. मैं बस यही बताना चाहूँगा कि प्रॉपर एनालिसिस कर लो. अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, और आप वो छोड़ के यहाँ आने का कर रहे हो, आप कॉलम बनाओ, आप पेपर पेन लो, लिखो, स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है. फिर दो कॉलम बनाओ कि दिस इज द मैक्सिमम आई कैन अचीव, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम आई कैन लूज. आप अब बिलीव करो कि वो मैक्सिमम आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर लियो, और बिलीव करो जो मैक्सिमम लूज करना चाहते हो वो भी कर लियो. अब यहां से सोचो, ये अचीव करके, कि जो आप लूज करना चाहते हो कर लिए हो, क्या अब आपको ये अचीवमेंट वर्थ इट लग रहा है?
0: राइट.
1: अगर आपको वही वर्थ इट नहीं लग रहा है तो इसमें घुस क्यों रहे हो? प्लानिंग तो बाद की बात है. लोग ये सब करने के बाद फिर देखते हैं, अरे क्यों कर लिया यार, पर टाइम निकल गया ना.
0: सबके सपने भी होते हैं ना, कि हमें बहुत जल्दी बड़ा ब्रेक मिल जाएगा. आपने भी सोचा था? हाँ. प्रोड्यूसर्स खड़े हैं बाहर लाइन लगा के.
1: बताया, उनकी गलती, मेरी गलती.
0: हाँ, आपके केस में तो उन्हीं से गलती हो गई. हाँ. लेकिन अब कोई सोचे कि सीधा सिल्वर स्क्रीन पर ही आना है, तो आप क्या कहेंगे कि एक्टर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आज तक है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, थिएटर है, OTT है, फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, सो कहाँ से शुरुआत करे एक एक्टर? एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं, लाइक यू नेम इट एंड दे हैव इट.
1: तो बहुत चीजें बहुत आसान हो गई है। अब तो कास्टिंग कॉल्स ना आप घर बैठे भी भेज सकते हो, आप अपने घर पे ही बना के भेज सकते हो, तो अब चीजें बहुत आसान हो गई है ये बनना। बट आपको एक्टिंग की शुरुआत करनी है ना, तो पहले खुद में करो,
0: घर पे एक्टिंग करो,
1: घर पे एक्टिंग करो, और अगर मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है तो बाथरूम में के अंदर बंद करके आईने के सामने।
0: ओके, तो यहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए,
1: यहाँ से शुरुआत कीजिए
0: और फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करें कि थिएटर करना है।
1: थिएटर ऑलरेडी बात की बात है, पहले आईने के सामने अच्छा एक्टिंग कर पा रहे हो या नहीं।
0: और अच्छी एक्टिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अभी से डेवलप कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, आपके एक्सप्रेशन पे वर्क करना है। कहीं कहते हैं कि डांस सीखना बहुत जरूरी है, उसके आपकी बॉडी लैंग्वेज पर उससे बहुत एक अच्छा असर पड़ता है, आपके पोस्चर पे आपकी ग्रेस आती है। सो कुछ ऐसा है जो साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब अपना होमवर्क कर कर ही आते हैं।
1: मैं तो अभी कर रहा हूँ, मैं अभी डांस सीख रहा हूँ।
0: okay. कौन सी डांस फॉर्म सीख रहे हैं आप? बॉलीवुड?
1: बॉलीवुड, बॉलीवुड। मैं डांस तो करता हूँ ना, तो मैं एक्सप्रेशन तो दे देता था,
0: राइट,
1: पर मेरा बॉडी वैसे नहीं मूव कर रहा था। सो अब सोच रहा हूँ उसे भी थोड़ा बेटर कर लूँ। सो आई एम लर्निंग बॉलीवुड, लर्न अ बिट ऑफ कंटेम्पररी, थोड़ा बहुत सब कुछ सीख रहा हूँ डांस।
0: वेल दैट्स वेरी नाइस, और एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ, आपकी जर्नी के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, और सच में ही फील हो रहा है कि सपने देखने चाहिए सच हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, मिरेकल्स डू हैपन। आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे, राइट?
1: या मिरेकल्स डू हैपन, मैजिक डज हैपन, इट्स योर बिलीफ इन इट, इट्स योर बिलीफ इन इट व्हिच मेक्स इट हैपन। जस्ट ये ध्यान रखना होगा कि वो होगा नहीं, आपका बिलीफ उस पे उसको होने होने पे मजबूर करेगा।
0: बिल्कुल, पेट दर्द है नहीं, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द हो जाएगा।
1: हाँ, इतना सोच लो कि आप दवा भी खा सकते हो और दवा खाने से वो
0: ठीक हो जाएगा। Well, that's amazing. I'm sure कि जिस तरीके से आपने एक्टिंग सीखी और भी लोग सीखे, और अपने of course, अपने आपने बोला क्योंकि अपने एलिमेंट्स आएंगे तो वो अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। आपकी इस जर्नी के लिए आपको डेफिनेटली बधाई देना चाहती हूँ, और आप यहाँ आए, आपने टाइम दिया और इतने कैंडिड तरीके से अपनी बातें शेयर करी, थैंक यू सो मच। इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, स्पेशली पप्पू प्रसाद पांडे जी।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू to everyone watching, thank you to PV Waves, thank you to Akashwani, and it has been a pleasure, it's an honor being here.
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट YouTube चैनल पर। ये पॉडकास्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो, शाद सुरे सारा दिन, शाद सुरे सारा दिन।
4: তুমি শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার, উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার।